0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237474 core.org.uk।

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237774 court.org.uk।
3: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 7 o'clock.

0: Move for 10 आ गया है, This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: इंस्पायर एफएम।

ऑलराइट, अब तवाज़ुन की बात करते हैं। इस सूरत में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस किया गया है, उसकी कुछ मिसालें देख लें। एक तरफ थी तारीफ, दूसरी तरफ था शुक्र, जो अलग अलग चीज़ें हैं उन दोनों को एक साथ बैलेंस करके हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अर रहमान में तीन बातें थी और रहीम में दो बातें थी, उन दोनों को इकट्ठा करके उसको बैलेंस किया गया। इसी तरह दुनिया की बात की गई शुरू में रब्बिल आलमीन तक, फिर उसके बाद आखिरत की बात आ गई मालिकी यौमिद्दीन। इसी तरह शुरू की आयात में फ़र्द के बारे में बात हो रही थी और आखिरी आयात में आप देखें जमा इस्तेमाल हो रही है, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदीना नअबुदु अलमग़दूबी अलैहिम जमा अद्दालीन जमा, माशरे की बात हो रही है। तो एक बैलेंस आ गया फ़र्द के और माशरे के दरमियान। इसी तरह इबादत करना और मदद तलब करना, दोनों के दरमियान एक बैलेंस। हम अल्लाह का हक अदा करें और अल्लाह हमारी ज़रूरियात को भी पूरा करें, राइट। फिर आसमानी हिदायत और ज़मीनी हिदायत, इससे क्या मुराद है मैं अभी बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने हमें, एक तो हमने पहले कह दिया सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आ सकता है, लेकिन उस हिदायत में एक ज़मीनी पहलू भी क्या है, माजी की तरफ तारीख में देखना है किन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया और कौन से लोग हैं जो गज़ब के मुस्तहिक हुए, राइट। तो आसमानी हिदायत और ज़मीनी हिदायत। इसी तरह हिदायत की वजाहत, एक तो है इनाम, दूसरी तरफ है इन लोग ऐसे बुरे लोगों की तरफ ना हमें ले जाना, हमें इस रास्ते से बचा लेना, बैलेंस बिटवीन मुस्बत और मनफी ना, दोनों के दरमियान। अच्छा, अब पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तीन आयात। इन तीन आयात को मैं कहता हूँ इल्म, इन तीन आयात को मैं क्या कह रहा हूँ इल्म। क्यों? इसमें आपको किसका इल्म हुआ?

0: child growing up without the love and protection of their parents. Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
1: Oh, Hillary.
2: I was going to use newspaper display advertising.
3: But
2: it costs £10 per inch.
3: And that's too expensive.
2: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
3: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
4: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
5: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
6: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
7: अपने आप से सोचना ना स्पेशली शो में आने के बारे में आप मत अपने आप से मैं लोगों से कहता हूँ मेहरबानी करो मेरे बारे में और जो मैं कह रहा हूँ ना उसके बारे में अपने आप से सोचना बंद कर दें बजाय इसके कि उस पर ध्यान दें जो मैं कह रहा हूँ
8: ठीक है सर जी
7: ठीक है
8: हाँ जी और लास्टली आई जस्ट वांट टू थैंक यू लास्ट टाइम मैंने मैम आई थी मुझे उनका नाम नहीं मालूम लाइक आई रियली वांट टू थैंक हर फॉर
7: हां वो डॉक्टर साहब ने आपके बारे में कहा था
8: हाँ जी बिकॉज उस दिन मैं काफी इमोशनल था पहले तो मैं अपने आप को संभाला और जैसे ही उन्होंने बोला मेरे फिर आंसू निकल पड़े मैं कहा यार बड़ी मुश्किल से
7: ये सारी बातें होती है ना ये कंटेनर की सारी बात लेकिन देखें आपको ने अपने तरीके से एक्सप्रेशन दिया उन्होंने भी आके दिया आपने इन चीजों को से कतई नजर होके बाहर निकल के आपने इन तमाम चीजों हमें प्योर लोग चाहिए प्योर लोग ऐसे ही होते हैं प्योर इमोशन भी ऐसा ही होता है इसको सिर्फ हमने इस एनर्जी को हार्नेस करना है और इसकी मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा जज्बाती आदमी था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि इमोशंस को इंटेलिजेंटली यूज़ करना है वरना यही इमोशन आपको खा जाएंगे और अगर आप इसको केयरफुली और समझ के इमोशंस को यूज़ करेंगे तो ये आपको वहाँ पहुँचा देंगे जो रब हमसे चाहता है तो हैंडल करने की सिचुएशन है सर उसमें कोई वीकनेस नहीं कोई भी वीकनेस नहीं होती वरना मैं कितनी दफ़ा तलत साहब के बारे में शो कर रहा था मेरी आवाज़ कितनी दफ़ा रिंद गई कितनी दफ़ा मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कितनी दफ़ा मैं लोगों से बात करते हुए जब मैं इतनी प्यार और इज्जत करते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं या मेरी आवाज़ गुलगीर सी हो जाती है पता लग जाता है आप लोगों को नज़म पढ़ते हुए भी कभी हो जाती है इसमें कोई मैं कमज़ोरी में ये के अंदर नहीं है ये तमाम चीज़ें ये एक्सप्रेशन है इंसान होने के नाते हमारे ठीक है नाइस ऑफ यू ब्रदर थैंक यू वेरी मच मेहरबान हमारे साथ काफ़ी देर से रेडियो आज रोंद
9: मैं भाई हीरा सिंह को दो पॉइंट्स देना चाहूंगी बातों से एक तो ये आप जब हमें हमसे डिस्कस करते हैं तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट एंगल डिफरेंट पॉइंट्स और अपने एक्सपीरियंसेस सब कुछ बता रहे होते हैं जिसकी रोशनी में हम अपनी जिंदगी को देख रहे होते हैं एंड देन वी फिगर आउट कि हाउ आई कैन अप्लाई सर्टन थिंग्स एंड हाउ कैन आई अवॉइड फ्यू थिंग्स सबसे पहले तो ये है कि वो शख्स जिसने वो जुमला कह दिया भाई से तो दैट मीन्स कि वो किस फेज में था किस फैमिली से आया है उसका बचपन कैसे गुजरा उसका बैकग्राउंड क्या था और वो किस मसाइल मुश्किल से गुजर रहा है सो वो भी हमें सोचना होता है जब हम एक दफा ये सोच लेते हैं तो हमारा ये सारा जो एक थॉट है वो हम उसको रोक के फिर डिफरेंट एंगल पे चल पड़ते हैं दूसरा ये कि हम पैटर्न्स देखते हैं अपने भी और दूसरों के मैंने लाइफ में जब अपने पैटर्न्स और दूसरों के देखने शुरू किए तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ आनी शुरू हुई why certain people keep repeating the same

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum, this is Omar Regan.
4: This is Moses the Comic.
5: This is Rizwan Hussein.
6: This is Baba Ali.
7: This is Nabil Abdurrashid, and you're listening to Inspire FM. Inspire yourself to listen to Inspire FM on 105.1.
8: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbours. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offence, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
9: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
10: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you when a single disaster smites you? Although you smote your enemies with one twice as great, you say, "From where does this come to us?" Say to them, "It is from yourselves because of your evil deeds, and Allah has power over all things."
11: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
12: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
13: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
14: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
15: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
16: हाँ जी जिंदगी में ना क्योंकि कोई चीज़ 100% कंफर्म नहीं होती है जैसे मसलहत आमेज़
4: जब कहते हैं ना झूठ शर्मगेज़ सच से बेहतर होता है, यानी वो ट्रूथ जिससे आग लग जाए, जिससे रिश्ते टूट जाएं, जिससे कोई मसाइल पैदा हो जाएं, उसकी जगह वो मसलियत आमेज़ यानी वो डिप्लोमेटिक किस्म का बोला हुआ लाए जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे कम अज़ कम रिश्ते नहीं टूटेंगे और बहुत बड़ा कोई डिबैकल का जो ना वो रीज़न नहीं बन जाता। तो इंसान को खुदा ने अक्ल दी है, फहम दी है, और उसको डिसाइड करना, उस सिचुएशन के मुताबिक ट्वीक करना, ये उसको दिया है। और इसीलिए कहा है कि किसी आदमी अगर, तो वरना तो ट्रूथ है तो सच बोल दो, लेकिन रब ने, उसी रब ने आपको ये, उसके हो सकता है मसला आपसे कोई बात पूछे किसी के बारे में कैरेक्टर से रिलेटेड कोई चीज़, आप सच बोल दें, उनकी ज़िंदगी रिश्ते बच्चे बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाए सारे का सारा, लेकिन वही रब आपसे कहता है कि दूसरों के ऐब छुपाओ। तो कोई चीज़ें ऐसे, वो ऐब जिससे कोई सिचुएशन डील हो सकती है या बेहतरी उसमें से निकाली जा सकती है या उसको चांस दिया जा सकता है, फर्स्ट स्टेप में आपने वो करना है। और अगर वो फिर बहुत सिचुएशन हद से बाहर निकल जाए और उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं या उससे कोई बड़ी यू नो सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो फिर आपने उसको इन द इंटरेस्ट ऑफ द यू नो जिसको प्रो बोनो पब्लिक को कहते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उसमें अगर आप कोई चीज़ बताते हैं तो फिर वो और बात है। लेकिन कई सारे सच बताने के नहीं होते, तो अगर आप बताते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि जिनको आप बताते हैं उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो किसी को बंदा भी मार सकते हैं, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो आपने फिर ये समझना होगा कि आप किसको क्या कह रहे हैं। इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपका ना अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। असल में हम जागे हुए नहीं, हमें पता ही नहीं किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कौन सी बात किस सोच में करनी है। हम बेहोशी में बेहोशी दिया शाटा मारते रहते हैं हम इधर उधर, खाम खजे नहीं, वो जो हमारे टुल्ले क्रिकेटर्स नहीं होते आके टुल्ले मारना शुरू कर देते हैं, बैट्समैन और होता है टुल्ले मारने वाले और होते हैं, फिर जब जब पोजीशन आती है वो सब कुछ मार के 50-60 पे बाहर निकल आते हैं। तो हमने लाइफ में ना गांव में पता कहते थे बेगमी दिया शाटा मार दे, कि बेगम मतलब लगा हुआ, उसको पता ही नहीं कि आउट भी हो सकते हैं, उसको पता ही नहीं कि क्या गेम चल रही है, हमने हारना भी है जीतना भी है, ये सोच समझ के खेलना है। तो हम बेगमी दिया शाटा मार रहे हैं बेसिकली, तो हम चाहते हैं कि बेगमी दिया शाटा में ही ना हम शादियां कर लें, हमारे बच्चे हो जाएं, हर चीज़ मतलब दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब वो सिर्फ हमारे लिए, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, ऐसे नहीं होता। एंड दे लिव्ड मिजरेबली आफ्टरवर्ड्स बिकॉज दे डिड नॉट यूज देयर हेड इन टाइम। और फिर कोई कहने सर ये ऑन टाइम होता है, ये ऑन टाइम हो या इन टाइम हो, यू डिड नॉट यूज योर ब्रेन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट।
5: और कुछ एक और भी क्वेश्चन था लाला,
4: आज आज कोई नहीं है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लोग फिक्र ही ना करें।
5: अच्छा लाला एक
4: यू है, किसी ने कहा है यू हैड मी एट बेगमी दिया शाटा, वो हाँ जी
5: लाला मैंने देखा है जो जो लोग अंडर अचीवर्स होते हैं जैसे स्कूल में या बचपन में अंडर अचीवर, वो बड़े होकर ज्यादा अच्छे रिस्क टेकर्स क्यों बन जाते हैं?
4: असल में ना जी अंडर अचीवर का बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसानों को, एक तो ये अचीवमेंट के स्टैंडर्ड्स ही माठे हैं ना, मुझे तो कभी कोई आदमी अंडर अचीवर नहीं लगा मैंने ज़िंदगी में, ओवर अचीवर्स भी जो है ना मुझे कभी उसमें भी कोई कमाल नज़र नहीं आया। ये मुझको डिसाइड करना है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, हो सकता है जो मेरे लिए अचीवमेंट हो बहुत सारे लोगों के लिए वो अंडर अचीवमेंट हो। मैं जब से बड़ा हुआ मुझे लोग 30 साल की उम्र से मुझे 40 साल तक लोग कहते रहे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ भाई मुझे वो नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। सो ये अचीवमेंट्स अंडर अचीवर या ओवर अचीवर या यू एम्बिशियस होना, ये बहुत डिबेटेबल है। बहुत सारे लोग मिजरेबल हैं कोई चीज़ अचीव करने के पीछे, उनकी सेहत चली गई, उनके रिश्ते चले गए, उनकी मैंने ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, बट वो अभी भी उन्हीं चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं जो कि एक्चुअल में कोई माने नहीं रखती। तो डिपेंड करता है ये। और दूसरी बात है जो अंडर अचीवर होते हैं वो बाद में जारी बात है उनको ये कॉम्प्लेक्स जोर लगाते हैं, फिर वो फिर ओवर कॉम्पनसेशन जैसे नहीं की जाती चीज़ों की, इस तरह के भी बहुत सारे लोग होते हैं। बल्कि मेरी अपना मैंने जो देखा था, जो लोग बुक वर्म्स होते हैं या बुकिश होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, स्कूल के ज़माने में बहुत अच्छे थे, आगे ज़िंदगी में उनके बजाय जो मीडियोक्रस थे वो बहुत आगे गए, और जो बिल्कुल ही कोई उस ज़माने में जो पढ़ाई में बहुत ही बुरे थे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कोई खास काम नहीं किया, उनकी वही अचीवमेंट थी जो स्कूल के ज़माने में थी ज़्यादातर लोगों की, ये भी मैंने देखा है। लेकिन जो मीडियम थे दरमियान में जो लोग थे उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की। ये ऑब्जर्वेशन है, हर आदमी के लिए डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने जो 2-4 हज़ार लोगों को देख के ऑब्जर्वेशन बनाई, क्योंकि टेस्ट तो इसी तरह ही होते हैं ना, स्टडीज़ भी इसी तरह ही होती हैं, सैम्पलिंग ही की जाती है लोगों में और उसके ऊपर ही स्टडीज़ करके देखी जाती हैं। तो मैं भी ज़िंदगी में जो देखता हूँ उसके हिसाब से ही, वो अब इतनी वो लोगों की तरह कंट्रोल इन्वायरमेंट में तो स्टडी नहीं की जा सकती, तो मैं तो यही शुरू से लेकर आखिर तक जो देखता हूँ मेरे माइंड में वो चीज़ें रहती हैं, तो मैं हिसाब लगाता हूँ फिर सबकी लाइफ का, उनकी जहन का, क्या थे, क्या बने, क्या कर रहे हैं। फिर जब मिलता हूँ अभी मैं उनसे 10-20-30 साल के बाद, तो उससे भी मैं हिसाब लगाता हूँ कि ज़हनी तौर पे उन्होंने वैसे तो चीज़ें अचीव करी, लेकिन ज़हनी तौर पर बेचारे अल्लाह माफ़ करे।
5: तो आपको नॉस्टैल्जिया होता है, आपको पुराना वक्त याद आता है अपना?
4: नहीं, मेरा नया वक्त, मेरा ये वाला वक्त इतना अच्छा है कि मुझे पीछे कोई वक्त याद नहीं आता, ना मुझे लोग वर्दियाँ याद आती हैं, ना मुझे कुछ और याद आता है, मुझे सिर्फ अपने वो यार, अपने वो दोस्त जो है ना मेरे, कभी कभी खान जी और माँ के साथ गुजरा हुआ कुछ वक्त जो है वो मुझे याद आता है कभी कभी कभी, लेकिन उसके बाद जो मेरी होश की ज़िंदगी में मेरे जो दोस्त इस दुनिया में नहीं है और जिन लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो लोग, उन लोगों के साथ जो मेरा वक्त गुजरा है, मुझे सिर्फ वो याद आता है, दैट्स ऑल। और कभी भी ये नहीं आता कि वो वक्त दोबारा आए, मेरा ये है कि वो आगे लंबा, उस ज़माने में हम ऐसे थे, इतने खुश थे, तो अब आगे कितने कमाल हम कर रहे होते और खुश हो रहे थे, और फिर ये इस बात की तसल्ली भी रहती है कि आगे जाके मुलाकात भी करनी हो उन लोगों से, तो इतना कोई खास वो मुझे नहीं आता।
5: तो अगर बहुत से लोग कहते हैं वो बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, तो आपको क्या ख्याल है कि अगर उनको दोबारा उस टाइम में ले जाया जाए तो क्या वो खुश होंगे?
4: असल में ना बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या करेंगे जब वापस जाएंगे, अगर ये चीज़ उनको वापस भी दे दी जाए। चीज़ें वक्त के साथ साथ रंग बदल जाती हैं, इंसान वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, उनकी ख्वाहिशात बदल जाती हैं, हमारे इमोशंस भी इंसानों के लिए बदल जाते हैं, लेकिन हमें नॉस्टैल्जिया में ना रहने का शौक बहुत है कि जी वो पुराने वक्त, मैं यू नो पुराने वक्त, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें जो, और वो ज़्यादातर पता है कौन लोग करते हैं, जिनका ये वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता, जिसका ये वक्त अच्छा चल रहा है ना, प्रेजेंट में जो रह रहा है और उसमें वो कोई कर रहा है कमाल और वो आगे फ्यूचर की तरफ देख रहा है कि आगे कितना अच्छा होने वाला है, वो पीछे पास्ट को सिर्फ यूज़ करता है ये देखने के लिए कि मैं गलत कहाँ था, और वो गलतियाँ मुझे प्रेजेंट में नहीं करनी है और मुझे अपना फ्यूचर को बेहतर करना है, इसीलिए लोग बार बार पीछे जाते हैं। कई लोग आपको याद है जिसको जी सच मोहब्बतें नहीं मिली, जो कहते हैं कि जी ये मैं शौहर बीवी में भी होता है, महबूब में भी होता है, मोहब्बत में भी लोग होते हैं, जी फलां वाली मोहब्बत अच्छी थी, वो इसलिए अच्छी थी कि ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, उसमें आप जलील हो रहे हैं, इसलिए आपको पिछले भाई याद आ रहे हैं या बहन याद आ रही है, और अब आप एक्चुअली उनके मामू और खाला हैं, बच्चों फूफी हैं, सच्ची बातें हैं ये सारी, सब बता के जाऊंगा मैं। नाइक्विल काम कर रही है, आई लव नाइक्विल, सुबह तक ठीक भी गुजारा कर भी देती है और नींद भी हो जाती है, गला भी दुखना बंद हो जाता है और बंदे का दिमाग भी ना थोड़ा वूजी सा होता है। लेकिन सच्ची बात बताने को ना, आप पता है आपको सच इतना फनी है कि झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सच इतना फनी है हम लोगों के लिए, क्योंकि किसको ही बोलता ही नहीं, जब कोई बोलो हमारी हंसी छूट जाती है।
5: लाला ऐसा क्यों है?
4: इसलिए कि हम लोग झूठ, मुनाफ़कत, ड्रामे, जो हम सुनना चाहते हैं, एम्बेलिशमेंट्स, कार्रवाइयाँ, यू नो अजीब अजीब बातें, यू कंप्लीट मी, इस किस्म की, भाई आई एम इनकम्प्लीट माई सेल्फ, हाउ द हेल कैन यू कंप्लीट मी, यू आर एन इडियट योर सेल्फ, ठीक है जी, यू आर एन इमोशनल फूल एंड आई एम यू नो एन इमोशनल रैक, तो क्या मतलब यू कंप्लीट मी, तू बेचारा अपना, तेरा खाना पीना उठना बैठना नहीं सही, तू यू नो हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो याद है वो मैं, वो एक लेडी थी, वो कहती थी जी, तो उसको जो हमारे ज़माने के लोग हैं ये कहते हैं हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, और भाई आप पजामे को W बना के खुद बीच में से बाहर निकल जाते हैं, कपड़े आप उठा के जगह पर नहीं रख सकते, क्या आपसे मोहब्बत करे कोई, मोहब्बत आपसे करे कोई।
5: जब मैं काम करती, आई यूज टू वर्क इन लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा पेशावर के, इट्स अ बिग वन, हाँ, तो वहाँ पे हमारे कॉलीग होते थे, उनकी डिवोर्स मेरे ख्याल से 26 ईयर्स के बाद उनकी डिवोर्स हुई, और द रीजन ही वाज गिविंग के मेरी बीवी से मुझे स्मेल आती है, तो व्हाट वाज ही डूइंग फॉर 26 ईयर्स, वो सब उससे यही पूछ रहे थे कि 26 साल तुमने क्यों बर्दाश्त किया,
4: क्योंकि वो एक स्लो आदमी था ना पहले, वो ये शुरू से ही अगर वो ये कर लेते और ये कोई चाहे वो हॉलीटोसिस की वाली स्मेल है या जिस किस्म की भी है, इंसानों की बॉडी का डिफरेंट होता है, ये सारी चीज़ें फिक्सेबल हैं, ये कोई रीज़न नहीं है, और अगर उनको ये अब वो रीज़न उन्होंने ये उसको बताया तो सारी बात है उनका दिमाग घास खा रहा था इतने अरसे से, ये बातें तो पहले 2-4-6 महीने की होती हैं, उसके बाद अगर ये सिचुएशन अगर रिपल्सिव किसी इंसान का भी फिजिकली रिपल्सिव होना आपकी तरफ, वो शादी जायज़ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जायज़ वो शादी, वो उसके लिए 26 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मेरा ख्याल है वो फरहाद की तरह शायद कुआं खोद रहा था दूध की नहर बिछाने, ही वॉज टू बिजी डूइंग ऑल दैट। हालांकि हुजूर पाक की बड़ी मैंने सुनत सुनाई भी है कि इन दफ़ा एक औरत थी, उन्होंने हुजूर पाक को आके कहा कि जी मेरा शौहर है, मेरा ख्याल भी रखता है, सिक्योरिटी भी देता है, मेरी फैमिली के साथ भी अच्छा है, प्रोवाइड भी करता है, लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो मुझे रिपल्सिव फीलिंग होती है। हुजूर पाक ने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा छोड़ो उसको, क्योंकि आप अपने नफ्स के साथ ज्यादती, दो बंदों के साथ, उसके साथ भी ज्यादती कर रही है, उसको पता भी नहीं है कि ये बात ऐसी, और दूसरी आप अपने नफ्स पे कोई भी चीज़ इस तरह भारी नहीं कर सकते। रब जो हमारा है ना और जो पैगंबर है, उसने तो आपके लिए इतनी आसानियाँ रखी हैं, हम खुद बदबख्त बीच में ये जो लोग हमने अजीब अजीब से रख लिए हैं ठेकेदार मज़हब के, और किताब हम खुद नहीं पढ़ते और सुन्नत नबी हम खुद नहीं पढ़ते, उस्वाए हसना जिसे कहते हैं कंप्लीट ब्यूटीफुल लाइफ, तो वो जब हमने देखी नहीं तो फिर ज़ाहिर बात है हमने जहालत की ज़िंदगी में हम अज़ाब भी काटते रहते हैं इस किस्म के। हालांकि दीज वर नेवर इवन अ प्रॉब्लम, नथिंग इज़ अ प्रॉब्लम। हमारे पैगंबर ने, हमारे रब ने हर चीज़ को इतना आसान कर दिया। वो चाहता है इंसान किसी चीज़ में एक्सेलेंस को पहुँचे, वो उसके लाइट को रिलैक्स रखना चाहता है, इसीलिए उसको बताता है ये करो ये ना करो, ये करोगे तो ऐसे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो वैसे हो जाएगा, और अगर तुम चाहत को समझ जाओ, मेरी चाहत वो है जो तुम्हारे लिए बेहतरी है, उसको समझ जाओ और उसके हिसाब से तुम ऑपरेट करो, तो तुम 100 साल की ज़िंदगी में 60 साल की ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते हो। लेकिन हम यू टर्न लेके डिस्ट्रैक्शन में आके इसकी सुन ली उसकी सुन ली, और जब समझ भी गए तो फिर भी हम, क्योंकि उतना आदत हो जाती है हमें मिजरेबल रहने की आदत, तो किसी आदमी ने कहा ना कि जी ये गंजे क्यों हो गया, तो उसने कहा यार बस फिक्र बहुत करता था मैं। उसने कहा किस बात की फिक्र, कहता है बस बाल घिरने की फिक्र। तो उसने कहा कोई दवाई दारू कुछ और के, कहता है नहीं बस फिक्र से ही फारिग नहीं हुआ, तो बंदा फारिग हो गया। तो हमें कुछ पता ही नहीं है बेचारे, हम बहुत लोएस्ट मेंटल कैलिबर के जी, 200-400 साल से हमने कुछ नहीं किया, हमने इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर, हमने फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर, हमने लोगों की इनेट एबिलिटीज़ उनके गिफ्ट्स के ऊपर बना के सिस्टम नहीं बनाए, ह्यूमन रिसोर्स में हम बर्बाद हैं, घर में हमने लोगों को प्रॉपर ये प्यार मोहब्बत और इश्क के ऑक्सीटोसिन और जज्बाती किस्म के वो जो हमारे हॉर्मोन्स हैं उनके चक्कर में हमने गलत औलाद पे गलत किस्म का प्रेशर डाल के उनको, जो उनके गिफ्ट थे ही नहीं, उस किस्म के अपने कॉम्प्लेक्सेस उनमें डाल के उनसे और काम करवा के गलत टाइम पे गलत लोगों को बुलवा के उनसे शादियां करवा के उनके मथे मार के, ये जो हमने सोसाइटी बनाई है इसकी बहुत सख्त सज़ाएँ हैं रब के पास, बहुत सख्त सज़ाएँ। दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया तो उसकी फिर सज़ाएँ, और हम कहते हैं जी हमने तो ये भी किया, हमने तो वो भी किया, हमने कुछ भी नहीं किया। जब हमें पता लग गया कि क्या करना था क्या नहीं करना था, उस वक्त हम पे इतना बोझ पड़ चुका था, वो जो भाई साहब ने 26 साल बाद जो डिवोर्स दी ना, 26 साल की ज़िंदगी के बाद, अभी वो उनकी एक पर्सनैलिटी थी, एक ज़िंदगी है, एक ख्वाहिशें हैं, कुछ मामलात हैं, वो अब कहीं पे भी जाएंगे तो वो इतना बड़ा ख्वाहिशात का बोझ उठा के लेके जाएंगे और आगे फिर उनको वही मिलना है। तो ये काम जो काम 6 महीने साल में करने और समझने का है, उसके लिए अगर आप 25-26 साल लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आपने ज़िंदगी में तो बूथा ही बना के फिरने ना।
5: और लाला ये हम सब करते हैं, जैसे जो चीज़ जल्दी मैनेज हो सकती है उसको खींच के इतना लंबा कर देते हैं,
4: क्योंकि डर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, माँ बाप की इज्जत की वजह से, ये सारे बखेड़े। एक आदमी खुश, मेरी बेटी खुश ही नहीं है, मैं लानत भेजता हूँ मर्द लोग सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, कौन सोसाइटी, कुत्ते बिल्ले सोसाइटी की, जिनको खुद नहीं पता कुछ, झूठ बेईमानी वो कार्रवाई अंदर से खोखले लोग वो क्या कहते हैं, मेरी बेटी नहीं खुश, वो तकलीफ़ में है, वो परेशान है, बस ख़त्म होगी बात। लोग कौन है, वो खर्चा उठाते हैं उसका, उन्होंने तकलीफ़ उठा के उसको पैदा किया है, उन्होंने उस पर खर्चा करके उसके ऊपर काम किया है, लोग कौन, मैं तो लोगों के लोग मेरी बेटी थोड़ी है, मेरी बेटी खुश नहीं है, मेरा बेटा खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, वो बंदा या बंदी उसको डिज़र्व नहीं करते। वापस हुजूर पाक ने अपनी दोनों दो बेटियाँ थी, जब इस्लाम आया उन्होंने कहा अपने दो दामादों से उस वक्त जो थे कि आप इस्लाम में आए, उन्होंने कहा हम नहीं आते, उन्होंने कहा वापस आओ, दोनों बेटियाँ वापस ले लीं अपनी, ख़त्म। उनसे ज़्यादा इज्जत है हमारी, उनसे ज़्यादा लोग हम पे नज़र रखे बैठे, तो हम वीक है ना, हम हमारा कुछ भी नहीं है बेचारों का। और अगर आप ऐसे हों भी और आपकी बेगम ऐसी ना हो तो फिर एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कहता हूँ दो बंदे एक मकसद, कुछ भी हो जाए एक मकसद, जब तक ये नहीं है वो इन्वायरमेंट में पावर मर्द के अंदर और औरत के अंदर आ ही नहीं सकती, उस फैमिली के अंदर मॉरल करेज आ ही नहीं सकती, ये सब चीज़ें मिल कर आती हैं, ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले आप वो बंदा बने, फिर देखें कि दुनिया आपसे कितनी इज्जत मोहब्बतें करती है, पहले आप वो इंसान वो औरत बने जिसके लिए कैसे कैसे कदरों में लोगों ने हम तख्त ताज छोड़ देते हैं, वो कोई लोग होते हैं, हम लोग लोग नहीं हैं, हम लोग अमलोक हैं, हम लोग समझती हैं आप?
5: हाँ जी,
4: दो किस्म के हम लोग होते हैं। चलें आज आपको हम लोग, एक काले रंग का छोटा सा होता है जिसमें बहुत सारी वो, उसको कहते हैं गांव में होता था,
5: हाँ,
4: गरीबों का फल जो होता था, छोटी छोटी काली काली, वो हम लोग कहते थे। और एक हम लोग पता है हम किसको कहते हैं?
5: वो बड़ा ऑरेंज वाला,
4: हाँ, पर्सिमन मेरा ख्याल उसको कहते हैं शायद।
5: हाँ जी, हाँ। जो यहाँ $5 का एक मिलता है।
4: हाँ, मैं उसको मिक्स कर जाता हूँ पार्मेजान के साथ।
5: अच्छा।
4: हर दफा आगे पीछे हो जाते हैं मेरे से, क्योंकि दोनों मिलते जुलते ही है ना, आगे पीछे, आर को आगे पीछे करने। उनके दिमाग में होता है ये, और कुछ होती है नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो वो चाहता हूँ, फलां चाहते हैं, व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट इट। ये वही वाली बात है, मेरे घुटने में दर्द नहीं है, मैं रोज आपको मिलके बताता हूँ, सजीला जी मेरे घुटने में दर्द नहीं है। अरे भाई वो ठीक चल रहा है, मैं क्यों बताऊँ, जब तक मैं लंगड़ा नहीं रहा, दुख नहीं हो रहा। तो लोग मैंने देखा वही बातें रिपीट करते रहते हैं, हम तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, फलां तो ऐसे हैं, ये तो अच्छा, आप तो ये हैं, हम तो ये हैं। बट किसने ये बातें तो हो चुकी, कोई डम है जिसको एक बंदे को बार बार बताओगे आप? आपका दिमाग स्लो चलता है तो आप समझते हैं बाकी दुनिया भी स्लो चलती है, इस तरह थोड़ी होता है। तो जो जो भी लोग बार बार चीज़ें करते हैं ना, वो उनका वो चाहते हैं। और अगर फिर कोई और, एक और बात भी बताऊं, आप कुछ चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर आप ऑपरेट नहीं करते या प्लान नहीं करते, तो फिर वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिल सकती। इसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं, ये आपका काम है। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग, क्या आपको खाना पसंद होता है, आप निहारी बनाना चाहते हैं, आप खा, आप जाके बनाते हैं, तो खुदा आपको रोकता है निहारी खाने से? रोक सकता है? नहीं, वो आप खाना चाहते हैं, आप जाओ बनाओ खाओ। आप उसमें अल्लाह को हम खुद ले आते हैं बीच में कि मैं, मतलब मुझे रोक ले खाना खाने से, क्यों रोके वो आपको? ये तो आपके अपने दिमाग के कीड़े। वो अगर रोकना चाहता है तो फिर शदाद ने जन्नत बना ली थी, उसको पैर उसने नहीं रखने दिया जन्नत में अपनी बनाई हुई, तो नहीं रखने दिया उसने, तो लेकिन उसने तो अपनी पूरी कोशिश की, उसने तो पूरी जन्नत बना दी थी, खत्म, आप तो बनाओ ना पहले। वो लोग कहते हैं शदाद बड़ा बुरा आदमी, तो शदाद जितना काम तो करके दिखाओ, जन्नत उसने ऐसी बनाई उसको उठा लिया, इतनी आला बनाई उसने, ही वाज अ क्रिएटिव मैन, उसने ही एटलीस्ट ही डिड व्हाट ही वाज वांटिंग टू डू। हम में से तो किसी ने वो काम भी नहीं किया, कुछ तो बनाओ। यहाँ तो हम एक थोड़ा सा रिश्ता नहीं बना सके, एक दोस्त नहीं है हमारा, एक गमगुसार नहीं है हमारा, एक हमारा बंदा नहीं जिसको हम राज की बात बता सकें, किसी से हम कुछ शेयर, हर एक से हम डरे हुए हैं, क्या औकात है हमारी? देखें सच में हमारी कोई औकात औकात नहीं होती बेचारे, हम बहुत माठे, बस ऐसे जैसे समझें कि यू नो यरकान हुआ हुआ है हमें, पीली आंखें पीली बूथी के साथ, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, आपसे कोई सलाम दुआ ना रखे, मोहब्बत कैसे करे आपसे कोई? अरे आप इंसान के पुत्र बने पहले, आप करेंगे मोहब्बत आपसे?
5: ज्यादा नहीं, मुझे लगता है आपने कोई स्पेशल दवाई ली है।
4: नहीं, आपकी वजह, आप और हीरा सिंह के आने की वजह से हुआ है। मेरे तो बचपन में भी कभी नहीं कहा मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरी तो जान ही छुड़ाना मुश्किल हो गई है लोगों से, बचपन से ही मेरी जान नहीं छोड़ रहे, मेरी तो खलाएं मुझको नहीं छोड़ती थी चिमट चिमट के मुझको, मैं कहता खरे परे हो जाओ, दांत साफ करके आओ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे, मुझे तो जान जो होता था मैं जान कैसे छुड़ाऊंगा इनसे। आपको पता है पठानों के कल्चर में ना, वी आर नॉट वेरी फिजिकल, लेकिन हमारे साथ सब कुछ बेचारे बचपन से ही रिश्तेदार सारे बहुत फिजिकल प्यार मोहब्बत में थे, तो मैं कहता था यार मैंने दूर हटना है इन लोगों से, ये स्पेस में इंट्रूड कर रहे हैं हमारे।
5: बस वज़ादल आप इतने प्यारे लगते हैं सबको, वो मेरा ख्याल से यही वजह,
4: और इंसान हो और किसी को, किसी एक बंदे को तो लगे ना, सबको तो कोई भी नहीं कह रहा, सब लोग तो ऐसे अजाब बन जाते हैं जान का, लेकिन इंसान तो प्यारी चीज़ है ना।
5: इसका मतलब है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो सबको अच्छा लगा।
4: ये याद रखिएगा जिंदगी में जिस इंसान को भी प्यार मिल रहा है ना, ये रब की मेहरबानी है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी जब आपसे जिंदगी में कहता है ना हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, या हम आपके लिए आपको बहुत इज्जत करते हैं, या हम आप फलां करते हैं, इसका मतलब है वो दूसरा बंदा जो आपसे मोहब्बत कर रहा है वो कोई कमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन है उसका, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, या आपकी ज़ात की कोई चीज़ हिस्सा है, या आपने उस पर काम किया है अपने ऊपर, और उस वजह से आपको इतनी इतने प्यार मोहब्बतें मिल रहे हैं इंसानों को। ये जिस इंसान को समझ आ जाए, आप वो बटन प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी, तो फिर हर आदमी को प्यार मिल सकता है। अगर आपको किसी को भी लगता है कि जी आपको प्यार नहीं मिला, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो वो करने की वजह से आपको हर कोई प्यार करेगा, बेख्तियार हो जाएंगे, ठीक है? आपने पिछले सारे आपके गले शिकवे माफ हुए, जाइए आज हम फिर आपसे खुश हैं, ठीक है?
5: ठीक है, सलामत से अल्लाह,
4: सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेहरबान हमारे साथ रेडियो आज ऑन द एयर।
6: हेलो आजाद जी।
4: जी हेलो मैम।
6: बस अभी हाय हेलो करने के लिए इतना ही टाइम बचा है,
4: फिर भी हम आपकी बात सुन सकते हैं।
6: आई हैड कपल ऑफ पॉइंट्स, वो ऑस्ट्रेलिया वाले भाई थे ना, उनका कॉल मैं सुन रही थी, फिर मुझे कॉल आ गया,
4: सो
6: आई कुडंट कॉल यू बैक, बट एनीवे, सो You know, a couple of things. First of all, if you are noticing about yourself that you get angry or yes, so you're already ahead of the whole bunch.
4: Yep.
6: Because True. Some people, they don't even notice of these things that they have that happen to them. So these days, you know, in my spiritual journey also, they always say, hey, if you're noticing these things, then it's already you are one step ahead. Secondly, कहते हैं कि you should never feel guilty about anything.
4: Mm-hmm.
6: Because जो हो गया वो हो गया. I mean, there's nothing you cannot undo that. And it hinders your progress. Mm-hmm. आपका जो progress होता है, spiritual progress, उसमें तो hindrance आ जाता है because you are, कभी ये भी होता है ना कि you are not able to pray, जैसे आपको कहा गया कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे इतना time करना है, ऐसे ऐसे करना है. So if you are not able to do, then it's okay. You shouldn't feel guilty about it because it will hinder, it'll be in the back of your mind and it'll keep hindering you. तो इससे अच्छा ये है कि ठीक है नहीं हो सका मेरे से एंड आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस आई हैड ऑल दीस अदर कमिटमेंट्स ओके आई कैन डू इट टुडे तो आपने भी यही बोला था बट दिस इज अ स्लाइटली न्यूएंस्ड पॉइंट कि वो आपके बैक ऑफ योर माइंड में जाके वो स्टक हो जाता है एंड देन आप करने भी बैठोगे वो काम या जो भी करना होता है तो आपके माइंड में ये आ जाएगा अरे मैंने इतने दिन नहीं किया था ये और यू नो आई एम बिहाइंड मैं आई फेल बिहाइंड ऑन दिस सो एंड देन इट बॉदर यू तो एक बार आपने सोचा कि ठीक है हो गया जस्ट थिंक अबाउट इट एंड से कि ओके इट वाज अ मिस्टेक अब यू नो आई डू द बेस्ट आई कैन दैट्स व्हाई इन ऑल द रिलीजंस दे से यू शुड डू द बेस्ट यू कैन अभी आपका बेस्ट यही है एट दिस पॉइंट गिवन योर सिचुएशन गिवन एवरीथिंग एल्स
4: Very valid point. Nice of you, ma'am. Thank you very much. और वक्त समाप्त होता है ओमेगा जी बाकी पॉइंट्स के लिए इंशाल्लाह आती रहेगा अपना जरूर पॉइंट दीजिएगा आखिरी वाला पॉइंट बहुत ही कमाल और वैलिड था इसके ऊपर जी जरूर आपने सोचना है और अपना अपना पॉइंट देना है और आज का ये शो यहीं पे ख़त्म होता है अगले शो में मी टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मी टाइम कोई सेल्फिश पॉइंट या उस चीज़ के लिए नहीं है मैं अपना मी टाइम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि मी टाइम है क्या क्यों आपने करना है डेली लाइफ अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए और कैसे सेल्फ केयर भी आपकी होती है और ये बाकियों के लिए भी बेहतर है और इसके बारे में हम बात करेंगे वेंसडे का शो ये मी टाइम का पार्ट टू होगा पिछले शो में आप लोगों ने अपने बहुत सारे पॉइंट्स दिए इसी तरह कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाते रहिएगा आज बहुत अच्छे नई आपको मेहरबान आवाज़ें और मेहरबान लोग आए उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया नंबर है स्टूडियो का 972-501-9390 और अब वक्त तो हो गया लेकिन चलिए दूर से कॉल है कर ले लेते हैं रेडियो आजाद जी रौंदिया
17: हेलो जी सत श्री अकाल
4: जी वाधवा जी देखें आपकी कॉल हम नहीं मिस करते चाहे वक्त ना भी हो तो हुक्म
17: थैंक यू सो मच मैं क्या बुलंद हो गई आवाज आके प्रोग्राम देना शुरू किया थे
4: बिल्कुल ठीक
17: एंड डॉक्टर शकीला शी सच ए स्वीट पर्सन मैं मिली तो नहीं पर मैं जिस सुनिया मेरा दिल करता तो मैं हक करा
4: इंशाल्लाह मैं आप वाला हक कर हम जरूर करेंगे
17: ठीक है
4: जरूर इंशाल्लाह ये मौका लगेगा हम हक पहुंचा देंगे आपको
17: देखो ऊपर वाले ने चाहा थे
4: पुराने जमाने में ना जिस तरह गायबाना नमाज जनाजा होता सी और ऐसी गायबाना हक भी देना शुरू करेंगे बाबा जी तुसी ना अगले शो च आना मैं तैनू ऑनियर भी लेना तुसी कुछ सुनाना
17: मैं आज हाजिरी पर लवा क्योंकि काफी कॉल्स आ रही सी और बढ़िया हीरा सिंह ने भी बड़े अच्छे सवाल किए बच्ची ने भी बड़ा बच्चे बड़े अच्छे अच्छे सवाल कर दे
4: आजकल देखो ना तुसी सरदार छाए पे ने ठीक है
17: अगले शो मैं सिर्फ अपनी हाजिरी पा दवा
4: सो ग्रेटफुल थैंक यू वेरी मच वाधवा जी ऑल द वे फ्रॉम कनाडा छत्र छाया में जी आपके प्यार और दुआओं में आपकी अरदासों में इंशाल्लाह अगली दफा फिर मुलाकात होती है लेडीज एंड जेंटलमैन टाइम टू साइन ऑफ और आपसे इजाजत चाहते हैं जाने से पहले दो तीन शेर आपकी नजर कर देते हैं चलिए मौका भी है दस्तूर भी और उसके बाद लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा अपने अपना कंट्रीब्यूशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को शो बनाने का 100 दफ़ा शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर
18: रेडियो स्टेशन एट www.radiozart.us. इसके अलावा अगर आप पोएम सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. तो हम याद रखिएगा ज़िंदगी ली तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.

0: was so severe. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
1: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरानी हमनसब से मुलाकात करते हुए कहा है कि बीजिंग ईरान के जायज़ हकूक और मफादात के तहफ्फुज़ के लिए तआवुन जारी रखने को तैयार है। अमरीकी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने एआई की तरक्की की रफ्तार कम करने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइल और मराकश ने सफारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। अमीर जमात इस्लामी ने धरने जारी रखने का ऐलान करते हुए हुकूमत से मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर करने की अपील कर दी और एफआईए ने बरून मुल्क स्मगलिंग का कारोबार करने वाले 13 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
2: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.

मा हौलहू, तो मा हौल क्या होता है? जो इंसान के इर्द गिर्द होता है, अराउंड होता है, यानी जो उसके आसपास था। माहौल का क्या माना? जो उसके आसपास था। दिस इज वेरी नेचुरल, जब आग जलती है तो क्या होता है? आसपास का सारा एरिया रोशन हो जाता है, वही हुआ। जहब अल्लाहू, ले गया अल्लाह। जहाबा, अरबी में सोने के लिए लफ्ज भी जहाब इस्तेमाल होता है, सोना, गोल्ड। और जहाबा का माना होता है जाना। सोने को क्यों कहते हैं जहाब? क्योंकि वह भी जाने की तैयारी में रहता है, हर वक्त यही फिक्र होती है कि चोरी ना हो जाए, चला ना जाए, जहाब। और वैसे भी जकात निकालनी पड़ती तो हर साल चलता जाता है। जहाब अल्लाहु, ले गया अल्लाह। बिनूरिहिम, उनका नूर। अब यहां जो बी है ये असल में जहाबा के साथ लग रही। जहाबा का वैसे माना होता है जाना, और जहाबा के साथ अगर बे लगे तो माना होता है लेके जाना, किसी चीज को साथ ले जाना। ले गया अल्लाह बिनूरिहिम, उनका नूर। उनका नूर, किन का नूर? मुनाफिकीन का नूर। और नूर जो है एक खारजी नूर होता है, जैसे इस वक्त आपके कमरे में लाइट है तो ये कौन सी है? खारजी, बाहर है। एक आंख में नूर होता है, होता है ना? अगर आंख की रोशनी चली जाए तो क्या होता है? सूरज भी चमक रहा हो आप तो देख नहीं सकेंगे। माहौल तो रोशन हो गया लेकिन इनका नूर चला गया। वाह, और तारा का हम, छोड़ दिया उनको। तारा का कोई मिसाल दीजिए तरके की। तरका का माना छोड़ना, को उर्दू में मतरूक, तर्क। जी हाँ, तरका, वो भी छोड़ा हुआ होता है। तरका हम फी जुलुमातिन, अंधेरों में। जुलुमात जमा है जुल्मत की, जुलुमात जमा है जुल्मत की, और जुल्मत किसको कहते हैं? अंधेरे को। और यहां कई अंधेरे हैं, जुलुमात। ला, नहीं, युब सिरून, वो देख सकते। युब सिरून का रूट है बा स्वाद रा। रा के बाद क्या है? वाव नून। किसकी अलामत है? जमा की। और या शुरू में वो के माने। ला युब सिरून, नहीं वो देख सकते। सुम्मन, बहरे। असम की जमा, अलिफ स्वाद मीम। शुरू में बस अलिफ लगा दीजिए। असम, असम सिंगुलर है और सुम प्लूरल है। जो सुन न सके, समम कहते हैं बहरेपन को, सख्ती को, कानों की, हार्ड होना। बुकमन, अबकम की जमा, इसके भी शुरू में बस अलिफ लगा दीजिए। गुंगा, इन्हें बोल नहीं सकते। ओमियन, आमा की जमा, आमा, इसके भी शुरू में बस अलिफ लगा दीजिए और या के ऊपर खड़ी जबर डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? आमा, अंधा, अंधे हैं। फहम, पस वो कौन? मुनाफिक। ला, नहीं। यरजिउन, वो लौटेंगे। जी, रूट क्या है इसका? रा जीम आइन, रजा। और वाव नून किसकी अलामत है? जमा की। और या वो नहीं लौटेंगे, वो नहीं वापस आएंगे। औ या का मानिंद। सैयब, जोरदार बारिश। सैयब किसको कहते हैं? जोरदार बारिश को। स्वाद वाव बा इसका रूट है। सैयब, बारिश, जोर की बारिश। ये हर्फ इल्लत का मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। अंग्रेजी में कितने वावल्स हैं? फाइव। इनके होने से कुछ तब्दीली आती है अगर ये शुरू में आ रहे हो लफ्ज के, एक ही बजाय एन लिख रहे होते हैं, है ना ऐसा? इसी तरह अरबी में भी तीन हरूफ इल्लत हैं, तीन वावल्स हैं, थ्री। और वो क्या है? वाव, अलिफ, या। इल्लत क्या होती है? उर्दू में भी इल्लत अलील, बीमार को कहते हैं। अरबों के यहाँ जब कोई बीमार होता था ना तो हम कहते ना हाय, तो वो कहते थे वाय, ठीक है? चूंकि वाय का लफ्ज़ बीमारी में इस्तेमाल होता तो इन हरूफ को भी